0: मन्दिर
1: धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिर गैंडाकोट 9 प्रासी फोन 078-50-12-26 वेबसाइट www.maulakalika.org.np

0: BJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।